का जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन 2081 बमोजिम रु 2000 देखि अधिकतम रु 2,00,000 सम्म जरिवाना गरिनेछ। ब्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल।

0: नहर।
1: World Inco Festivity Offer अब Pound House 1 वर्ष को 200 Mbps Internet और Net TV साथ में Dual Band Router Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set Top Box मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थरु लागू होने चं छिटो बने गई World Inc.
2: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

0: समीचो चौदह के में बोधे लोटी पर दीरो बैंगे ने विवरण पी भी शा मुई खातर खाई अमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
2: आंगी समीचो लोटी पर दिवों छामताई गुदी
1: बढ़ दी आ बढ़ दिवा लोटर खाली पर दिम बा सहीली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बायबर खाने बने खाई भी शा खाई मई विश्वास आनन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बने वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
3: सतर्कता ना ठग दिव से क्या बोलते ना
2: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरी लाई
5: बीए त आटियो बाबू गरगहना को लागी पो कहाँ जाने होला
6: गहना चाहिँ एकदम राम्रो अनि आधुनिक डिजाइन को बनाउनु पर्छ है दाई
7: दाजु भाई को केको गफगाफ हुँदै छ
5: के हुनु नि बीए त आटियो गरगहना को लागी कता जाने होला भनेको नि बहिनी
7: ल त्यसको लागि त चिन्तै लिन पर्दैन नि विगत 2034 सालदेखि तपाईको विश्वासका साथ सेवा दिदै आएको पुरानो अनि भरपर्दो एकमात्र पसल पशुपति सुनचाँदी पसल छँदै छ नि त्यही जानु पर्छ
5: पशुपति सुनचाँदी पसल कहाँ छ नि यो
7: यो त हाम्रै दमौली बजारको ब्यास 2 सफा सडकमा छ नि त्यहाँ त हामीले अर्डर गरे बमोजिमका आधुनिक डिजाइनका सुन चाँदी हिराको आकर्षक गहना तयार गरिनु

Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set box मात्र ₹12 प्रति महीना में. शर्तहरु लागू हुनेछन्. छिटो भनेकै Willingo.